ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
1: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Get ready to relive the beats that defined a generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday the 8th of August at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement where Bhangra, electronic beats and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2 p.m. with the event from 3 p.m. until 8 p.m. Tickets are just £25. For more information and tickets, visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media pages.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
4: Yo, DJ, hold tight. It's like Lightning MC

लाइफ जामियाना ओनो ओनो ये है अपुन का स्टाइल जामियाना ये है अपुन की लाइफ जामियाना ओनो ओनो ये है अपुन का स्टाइल जामियाना।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio connects your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735-043.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

सतकाल एंड वेरी गुड डे। मैं हूँ शहनाज मंसूर, एक बार फिर आपसी खिदमत में हाजिर हूँ ढेरों दुआओं के साथ। दुआएं हमेशा जो आपको मिलती हैं वो बहुत ही कीमती असासा होती हैं, और मेरे दिल में भी हमेशा आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको और आपके प्यारों पर अपनी रहमत का नुजूल हमेशा कायम और दायम रखे, और आप हमेशा खुशियाँ बांटते रहें और खुशियाँ समेटते रहें। आमीन।

0: कफ्सन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दस ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

और आपकी मनपसंद आवाज़ों पर मबनी एक बार फिर से खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आए हैं और इस उम्मीद और यकीन के साथ कि आप आज भी मेरे प्रोग्राम को और इन गीतों को इसी तरह इंजॉय करते हैं जैसे कि हमेशा करते आए हैं और आपका प्यार और आपका साथ हमें आज भी ज़रूर मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक साथ निभाने का।

बाहर का मौसम जैसा भी हो, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने खूबसूरत गीतों के साथ आपके दिल के मौसम को खुशगवार बना सकूं और आपको खुश कर सकूं। और आप जिस मूड में भी हैं, जैसे भी हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरे गीत सुनकर आपका मूड जरूर चेंज हो जाएगा और आप भी खो जाएंगे इस खूबसूरत गीत में और भूल जाएंगे अपने सब कुछ, जो कुछ भी आप कर रहे थे या जो कुछ भी आपके दिल में था, उसे भूल भाल कर आप हमारे गीतों में खो जाएं, ये मुझे यकीन है। तो आइए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत।

0: माँ के दोष पर उड़ते परिंदों के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम स्टूडियो पर और www.sunriseradio.fm पर पूरी दुनिया के कोने कोने में सुनाई देती है। इसके अलावा 100.6 एफएम पर और डीएबी पे ब्रेडफोर्ड, कीटले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्लिंटन, मिल्टन कीन्स। और इसके अलावा जनाब अगर आप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी आप सुन सकते हैं और बहुत जल्द आप ढाबी में भी सुन पाएंगे। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक दो बजे तक। मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी। तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं।
1: हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय सोफी ज्वेलर्स विद अ वाइड रेंज ऑफ डिजाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। सोफी ज्वेलर्स 119-21-21 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9। कॉल 0-1274-056-014.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा अलका याग्निक और कुमार सानू की मत भरी आवाजों में। तो चलते हैं दोस्तों, इसके साथ ही टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं इस वक्त 11:14 हुआ चाहते हैं, यानी कि 11:14। तो इसका मतलब साथ में ये भी हुआ कि कमर्शियल का टाइम भी हो गया है। तो जनाब, कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप प्यारे दोस्तों के लिए, प्यारे सुनने वालों के लिए। और मौसम भी काफ़ी जनाब गर्म है, तो थोड़े गर्म गर्म गाने भी हो जाएं जनाब, जो आपको ठंडा कर दें। गाना गर्म जो कई चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि वो यूं तो गर्म होती हैं, लेकिन उनकी बड़े कहते हैं कि तासीर जो है वो ठंडी होती है। तो इसलिए गर्म गर्म गाने जो है ना वो सुनाएंगे, लेकिन उनकी तासीर जो है वो ठंडी होती है। तो चलते हैं दोस्तों कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत खान साहब।

जी दोस्तों, अभी आपने दो प्यार भरी आवाजें अमित कुमार और जनाब का यज्ञ की आवाजों में प्यारा सा गीत सुना। यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और हमें फोन किया गुलाम भाई आपने, बहुत शुक्रिया फोन करने का और प्रोग्राम में शमूलियत का। आने वाला गीत आपके नाम करेंगे, आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम करेंगे और इस नवीद भाई के नाम भी करेंगे। और हीरा खान साहब आपने भी फोन किया, शुक्रिया फोन करने का, आपके नाम भी गीत होगा। और उसके अलावा जनाब इस वक्त प्यारी बहना सादिया पाकिस्तान में है और हाजरा जी अकेली है, उनको बहुत मिस कर रही हैं, तो जनाब उनके नाम भी ये गीत और इसी गीत को साइमा जी आपके नाम भी करेंगे और दीकर तमाम सुनने वालों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो आइए दो प्यार भरी आवाजें कमर सानू और साधना सरगम की आवाजों में ये प्यारा सा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।

0: जी दोस्तों, अभी आपने साजरा सरगम और कुमार सानू की प्यारी सी आवाज़ों में ये बड़ा प्यारा सा गीत सुना आपने। यकीनन आप सब ने इंजॉय किया होगा। गुलाम भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, आपके स्टाफ को सलामत रखे। बड़े प्यार करने वाले लोग हैं आप, और हमेशा सभी से प्यार करते हैं आप, तो आपका शुक्रिया इतना प्यार देने का और इज्जत देने का। अल्लाह आप सबको हमेशा सलामत रखे, हंसते मुस्कुराते रखे और लंबी उम्र दे, सेहत वाली दे, किसी का मोहताज ना करे। तो जनाब, अब कमर्शियल का वक्त हो गया है। कमर्शियल के बाद आप प्यारा सा गीत सुनेंगे, उसके बाद आपसे मिलते हैं। सुनते हैं एक छोटी सी कमर्शियल। और हाँ, अगर आप कोई गीत सुनना चाहते हैं, किसी गीत के साथ अपना नाम जोड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर फ़ोन कीजिएगा। हम आपके लिए जो हैं वो लाइनें खोल के बैठे हैं जनाब। नंबर होगा 01274306666।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Have you noticed the way fans shout at football matches?
4: Oh, wake up!
3: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाजों में। आप दोस्तों चलते हैं एक प्यारा सा गीत प्यारी सी शायरी के साथ। आप सभी सुनने वालों के नाम करते हैं क्योंकि बड़े दिनों के बाद ये गीत मैं सुनने जा रहा हूं और आप भी सुनेंगे। ये उन गीतों में से गीत है जो जब भी सुने अच्छा लगता है, मन नहीं भरता है। और ये जनाब गुलाम भाई का भी फेवरेट गीत है। उनके नाम और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन

0: क्या गीत था, क्या शायरी थी, और यकीनन आप सभी ने पसंद किया होगा। और दोस्तों अब इसके साथ ही चलते हैं, पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, अभी हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 11:46 हुआ चाहते हैं, यानी कि 11:46, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है। जनाब मलका जी, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा, बड़े दिनों के बाद जनाब आपने कॉल की। और आप गीत सुनना चाहती हैं जनाब ग़ुलाम भाई के लिए और जिया जी के लिए और आयशा जी के लिए और स्पेशली रानी जी के लिए आप गीत सुनना चाहती हैं, तो आप सबके नाम गीत करूंगा। फिलहाल तो कमर्शियल के बाद एक सदाबहार पुराना गीत होगा, तो वो आपके नाम करूंगा। उसके बाद जो है वो एक प्यारा सा गीत आपके नाम ज़रूर होगा, सुनते रहिएगा। उसके बाद तारिक जुल्फी साहब, बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब, आपके नाम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। हीरा साहब, आपके नाम भी करेंगे। और दीगर तमाम दोस्त जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं उनके नाम भी करेंगे। और जनाब गीत जो होगा वो सदाबहार होगा, और आप ज़्यादातर मेरे प्रोग्रामों में सुनते हैं। आज सोचा चलिए बड़े अरसे के बाद पहला प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो वही गीत जो हैं आप दोस्तों के लिए जो कभी हम प्ले करते रहते थे प्रोग्रामों में, उन्हीं से ही शुरुआत करते हैं। तो आपके नाम करेंगे और मुना जी आपके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम सुनने वालों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
3: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewelry. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274-488-935.

जी दोस्तों, अभी आपने लता जी और मुकेश की आवाजों में क्या गीत सुना जनाब, सदाबहार गीत, जबी सुने तो बहुत लुत्फ आता है। और चलते हैं जनाब, एक और प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश करते हैं, एंजॉय कीजिएगा।

0: जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। पता भी नहीं चला एक घंटा कैसे गुजर गया। आपका इतना प्यारा साथ है, वक्त का जो है एहसास ही नहीं होता कि कितनी तेज़ी के साथ ये वक्त गुजर जाता है। आप दोस्तों का इतना प्यारा साथ है। तो दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में शामिल हो गए हैं। कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करूं। तो चलते हैं दोस्तों प्रेम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम सुनने वालों के नाम करूंगा जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर और इंजॉय करते हैं इस गीत को।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना आशा भोसले और कमल सानू की आवाजों में। इसके साथ ही दोस्तों चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 12:13, यानी कि 13:12। तो कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब, और कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत। मलका जी ने आपने फ़ोन कर रखा है, आप गीत सुनना चाहती थी जनाब गुलाम भाई के लिए और आयशा जी के लिए, जिया जी के लिए और रानी साहबा के लिए। तो कमर्शियल के बाद आप के लिए ये गीत होगा, और ये गाना जो मैं प्ले करने जा रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है ये गाना, तो आपके नाम करेंगे, और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे। वाजिद भाई हडर्सफील्ड से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया आपका। ढेर सारी दुआओं के साथ आपने हमारा स्वागत किया जनाब, खुश आमदीद का शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। तो जनाब आपके नाम करेंगे, और तारिक ज़ुल्फ़ी साहब शुक्रिया जनाब एक बार फिर फ़ोन करने का, और आप के नाम करेंगे, और आप जो है वो हमेशा जो है वो गाना अपने दोस्तों के लिए सुनते हैं जनाब, और आप जिनमें हैं जनाब हीरा साहब जो हैं उनके लिए स्पेशली आप सुनना चाहते हैं, तो आप के नाम करते हैं। तो चलते हैं सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, एंजॉय कीजिएगा। कमर्शियल के बाद ये प्यारा सा गीत आप दोस्तों की नज़र।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go.

जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और नदीम की आवाजों में ये प्यारा सा गीत सुना और ये तो समझ आ गई कि दोस्तों की कहीं नज़र ना लग जाए, जब वो दुश्मनों का कहते हैं कि दुश्मनों की नज़र ना लग जाए, उस वक्त फिर मैंने कुछ सुना था कि जनाब नज़र जो लगती है वो सिर्फ उनकी लगती है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और जो आपको प्यार नहीं करते, आपका बुग़्ज़ रखते हैं या आपकी जेलसी करते हैं, उनकी नज़र कहते हैं नहीं लगती। जो नज़र लगती है हमेशा जो आपसे प्यार करते हैं उनकी नज़र लगती है। दोस्तों की तो समझ आ गई जब नदीम साहब ने कहा कहीं दोस्तों की नज़र ना लग जाए, लेकिन दुश्मनों की पता नहीं, मुझे करेक्ट कीजिएगा जनाब, क्या दुश्मनों की भी नज़र लग जाती है? जहाँ तक मेरी मालूमात है दुश्मनों की नज़र नहीं लगती। तो एनीवे चलते हैं दोस्तों एक और प्यारा सा गीत, जो मुझे ये भी गाना बहुत अच्छा लगता है, ये भी आपके नाम करते हैं। ये अलका याग्निक एक बार फिर आप दोस्तों के लिए गा रही हैं, लेकिन साथ निभा रहे हैं उदित नारायण साहब और अब्दुल कय्यूम साहब राइजिंग हॉल से आप फ़ोन कर रहे हैं जनाब, और मैं बातें कर रहा हूँ रेडियो पे, आपकी कॉल नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप क्या कहेंगे। एज यूजुअल आप ये कहते होते हैं कि जनाब सभी सुनने वालों को सलाम और गीत, तो जनाब आपके नाम करते हैं और कवल साहब आपके नाम करते हैं और गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम करते हैं।

0: जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और उदर नारायण को सुना। बहुत ही प्यारा गीत, प्यारी शायरी, प्यारी मौसीकी। यकीनन आप सभी ने एंजॉय किया होगा इस गीत को। आप दोस्तों, वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप प्यारे दोस्तों के लिए। टॉम साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बड़े अरसे के बाद आपसे बात हुई और आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। और सबीना भी आपके साथ थी, उनसे भी बात करके अच्छा लगा। तो टॉम साहब, आप सुनना चाहते हैं सबीना के लिए एक प्यारा सा गीत, तो आपके नाम करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। और इसी गीत को नजर करते हैं जनाब। इस वक्त काफ़ी सहेलियां जो हैं वो काम कर रही हैं और साथ में सनलाइट रेडियो की निशात को भी सुन रही हैं, जिनमें नजमा साहबा, इफ़त, नाजिया, हमीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जायदा और साइमा। आपके नाम भी करेंगे और आपके साथ साथ हाजरा जी आपके नाम भी करते हैं। बहुत जल्द जनाब हमारी प्यारी बहना सादिया जी आ जाएंगी। फिलहाल तो वो उम्रा करने गए हुए हैं और उसके बाद वो पाकिस्तान जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो जल्द मुलाकात होगी हाजरा जी। तो सनराइज रेडियो आपके साथ है, इंजॉय कीजिएगा प्रोग्रामों को। और जनाब, जहाँ कहीं भी आप सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, तो आपके नाम करेंगे ये प्यारा सा गीत, दो प्यार भरी आवाज़ें अलका याग्निक और कुमार सानू की। तो चलते हैं दोस्तों, कमर्शियल सुनते हैं और कमर्शियल के बाद गीत टम और सबीना स्पेशली आपके लिए गीत होगा।
1: 24 बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में सदाबहार गीत था। आप दोस्तों की नज़र किया था, यकीनन आप सभी ने एंजॉय किया होगा। और जनाब हमें फ़ोन किया जनाब उस्मान भाई, आपने शुक्रिया फ़ोन करने का, और कह रहे हैं कि जनाब काफ़ी देर से आप प्रोग्राम सुन रहे हैं और आपको बड़ा मज़ा आ रहा है, गाने जो हैं आपको सभी पसंद आ रहे हैं। तो उस्मान भाई शुक्रिया आपका प्रोग्राम को सुनने का, पसंद करने का। और कमर्शियल के बाद एक पुराने गीत की बारी होगी, तो वो आपके इनाम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। और हीरा साहब, ताजुल्फी साहब, अब्दुल करीम साहब राइजिंग हॉल से, वाजिद भाई और जनाब ग़ुलाम भाई और दीगर तमाम जो दोस्त हैं, यकीनन इस पुराने गीत को पसंद करेंगे। साइमा जी आपके नाम भी करेंगे और दीगर जितने दोस्त इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं उनके नाम भी करेंगे। लेकिन कमर्शियल पे जाने से पहले हम चाहेंगे टाइम चेक कर लें।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 12:42, यानी कि 12:42। तो जनाब कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ों में, इस उम्मीद के साथ कि आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं अब जनाब कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होगी। जरीना सबा आप भी फ़ोन कर रही हैं, तो आपके नाम भी करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
2: 24 hours a day. Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
6: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
7: Kuch humko.
8: Kya?
7: Kuch tumko.
8: Ha ha.

अलग अलग फिल्म से लिया हुआ गीत आप दोस्तों ने सुना लता जी और किशोर कुमार की आवाज़ों में। तो चलते हैं दोस्तों अब एक और प्यारा सा गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम स्पेशली जनाब इस वक्त बाबर शॉप पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं बशारत अली सिकंदर अली आरिफ अली उनके नाम और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी कर रहे हैं। तो जनाब सिकंदर अली कहते हैं कि अब हम थोड़ा वक्फा करने लगे हैं और जनाब क्या है कि चाय पीने लगे हैं तो जनाब ज़रूर पीजिएगा थोड़ी देर के बाद हम भी तो चाय पिएंगे जनाब। तो एनीवे आप दोस्तों के नाम करते हैं गीत और खान साहब आप भी फ़ोन कर रहे हैं जनाब तो आपके नाम भी करेंगे शुक्रिया खान भाई आपने दो बार हमारे प्रोग्राम में फ़ोन किया शुरू में भी और अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के ख़त्म होने पे भी आपने फ़ोन किया जनाब शुक्रिया आपका। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत मुना जी आपके नाम भी करते हैं गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम भी करते हैं और स्पेशली नाम करेंगे इस वक्त काफ़ी दोस्त जो हैं काम कर रहे हैं मलिक इम्तियाज़ साहब इकमाज मनीर वसीम इमरान मुजाहिद अल्लाह दिता उमेर बाबर और इफराज। तो चलते हैं दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत अलका यग्निक और कुमार सानू की आवाज़ों में

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। मुजाहिद भाई, बहुत शुक्रिया फोन करने का जनाब, अच्छा लगा आपने भाई से बात करके। तो मुजाहिद भाई आपके नाम गीत करेंगे कमर्शियल के बाद, अभी क्यों नहीं, माजरे चाहते हैं खबरों के बाद। अब खबरें आने वाली हैं, बस दो मिनट से भी कम रहता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए अब गीत पेश करने का फायदा नहीं। ये गीत छोटा सा है, 3 मिनट का है, लेकिन अभी 3 मिनट भी है, इसको नहीं आप पूरा सुन पाएंगे। तो इंशाल्लाह अगले आवर में जरूर आप दोस्तों के लिए गीत पेश करेंगे। इस गीत को एंजॉय कीजिएगा।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आ गए हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे। कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करें। अगर आप भी प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274306666। तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत जो है वो मुजाहिद भाई आपने फोन किया था पिछले आवर में, आपके नाम करेंगे। आपकी जानिब से मलिक इम्तियाज साहब, इकमाज, मनीर, वसीम, इमरान, अलादिता, उमेर, बाबर और इफराज के नाम भी करेंगे। और उसके बाद जनाब तारिक जुल्फी साहब, शुक्रिया जनाब, आपने बैड न्यूज सुनाया, चावल ख़राब हो गया जनाब, और ये बड़ी मुश्किल होती है जनाब। तो एनीवे उम्मीद रखते हैं जो भाई आए हुए हैं काम करने वो जल्दी ठीक कर देंगे ये मसला। तो एनीवे आपके नाम ये गीत करते हैं, इस गीत को सुन कम से कम आपका जो दिल का हाल है ना वो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो गीत में शायरी बहुत अच्छी है, तो आप दोस्तों के नाम करेंगे। और लियाकत भाई आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपने कहा कि पाकिस्तान गए हुए थे, वापस लौटे हैं, तो पहली बार मुझे फ़ोन कर रहे हैं और इसलिए आपकी हाजिरी हो गई। तो जनाब आप भी गए थे, मैं भी, इसीलिए काफ़ी मेरी भी गैर हाजिरी है। आज बड़े अरसे बाद पहली बार आया हूँ, तो जनाब ऐसी कोई बात नहीं है। तो एनीवे आप तमाम दोस्तों के नाम ये गीत जहाँ कहीं भी हैं, स्पेशली खान साहब भी और गजाला जबीर बेना आपके नाम थोड़ी देर के बाद ज़रूर गीत पेश करूँगा, सुनते रहिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर का ये गीत अर्शद महमूद की प्यारी सी आवाज में।
1: Hit of the hour brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8 bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the hour.

0: अर्शद महमूद की प्यारी सी आवाज में दोस्तों आपने हिट ऑफ द आवर सुना। इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:14, यानी कि 14 minutes past 1। तो जनाब कमर्शियल का टाइम हो गया है। कमर्शियल के बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं।
2: 24 hours a day, Sunrise Radio. कुल्लू नफ्सेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
4: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
5: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
4: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
5: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
6: Official media partner, Sunrise Radio.
7: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B4 37BG. Registration required. Limited seats available.

हाँ जी, क्या गीत था यकीनन आप दसों ने एंजॉय किया होगा, और जो आने वाला गीत है वो भी बहुत ही प्यारा है। और ये गीत मेरी जानिब से आप तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, दो प्यार भरी आवाज़ें अलका याग्निक और गुरदास मान की आवाज़ों में, वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग। और मदसर कियानी साहब, आप फ़ोन कर रहे हैं जनाब, शुक्रिया फ़ोन करने का, आपके नाम करेंगे। और इसी प्यारे गीत को प्यारी बहना गजला जबीन साहब आपके नाम करेंगे, खान भाई आपके और गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। इसी गीत को कमल साहब आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों, क्या गीत था, क्या शायरी थी, क्या आवाज़ें थी और क्या मौसीकी थी। इस गीत ने तो दिल के तारों को झुंझोड़ दिया है जनाब। उम्मीद रखता हूँ आप सभी ने इस गीत को पसंद किया होगा। तो यकीनन आप दोस्त जो हैं वो एंजॉय कर रहे होंगे गीतों को। तो चलते हैं जनाब, अब कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद एक और प्यारा सा गीत आ रहा है आप सभी दोस्तों के नाम।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735, 043

कोई लगता है कि गीत में कोई गड़बड़ है तो इसलिए इसकी जो है ना वो इसको बदल ही देते हैं। चलिए ये गीत एंजॉय कीजिएगा।

0: जी दोस्तों, अभी आपने दो प्यार भरी आवाजों में प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का वक्त हो चुका है। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं जोहर की अजान, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए। अल्लाह।

0: जी दोस्तों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही अब वक्त कमर्शियल का भी हो चुका है। और कमर्शियल पे जाने से पहले टाइम चेक करेंगे, आपको बताएंगे कि हमारी घड़ियां जो हैं स्टूडियो की वो क्या बता रही हैं, तो फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं जनाब, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 1:44, यानी कि 44 मिनट्स पास्ट 1। तो चलेंगे जनाब अब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत, सदाबहार गीत नहीं दख्तर की आवाज़ में, वो सभी सुनने वालों के नाम होगा। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
5: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

जी समीन, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और दोस्तों इसके साथ ही मेरे प्रोग्राम का वक्त जो है इख्तिताम पजीर हुआ जाता है। उम्मीद रखता हूँ आज का प्रोग्राम आप साथियों ने पसंद किया होगा। साथ निभाने का बहुत बहुत शुक्रिया। और तारिक भाई आप फ़ोन कर रहे हैं तो आखिरी गीत आपके नाम भी करेंगे। ग़ुलाम भाई आपके नाम, वाजिद भाई आपने फ़ोन किया था आपके नाम भी करेंगे। और ख़ान साहब आप भी फ़ोन कर रहे हैं अभी तो आपके नाम भी करेंगे। इरा खान साहब, मुदस्सर कियानी साहब, लियाकत भाई और ग़ुलाम भाई और जबीन भेना और जनाब जितने भी दोस्त इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं सबके नाम करते हैं। स्पेशली गाना मलका जी आपकी जानिब से ग़ुलाम भाई के लिए, और आपके साथ साथ आयशा जी हैं उनके नाम, जिया जी हैं उनके नाम, और रानी साहबा के नाम, और सभी सुनने वालों के नाम, और अमरीन साहबा आपके नाम। तो हमारी जानिब से खुदा हाफिज़, अल्लाह निकबान, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा। हमारी जानिब से खुदा हाफिज़, अल्लाह निकबान एंड गुड बाई।

0: your family treat this summer.
1: Visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
0: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
1: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
0: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
1: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
2: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
3: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
2: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
3: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
4: मेले आईया दो जटिया।

पाइया चाचरा गल दोहे वास्त्र कटे काली लिशके जलोंग उन्होंने हाली छड़ के बैठ गए हाली दिल पड़ हाली आखे साढ़े

0: मम्मी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 01274735043।
3: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे, पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
3: सोफी ज्वेलर्स वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओकलैंड ब्रैडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274056014 सोफी ज्वेलर्स।

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मजीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।

0: जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yog Sutras for realizing the true self. 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra, 07977-201226. Mirdosh Kumar, 07899-055525. Gurkirit, 07886-545970. Usha, 07931788-062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
3: ये मासूम बच्चे क्या इसी तरह अपना माजी गवाते, हाल गुजारते और मुस्तकबिल से बेखबर रहेंगे? इन्हीं में है इब्ने हिशम और बू अली सीना, जो तालीमी निज़ाम में मौजूद तबकाती तफरीक का शिकार हैं। ये इनकी मजबूरी है या हमारी कमजोरी? क्या इनको भी अपने तालीमी हुकूक बराबरी की बुनियादों पर नहीं मिल सकते? इसका हल सिर्फ और सिर्फ, नो डिफरेंसेस कैन ओनली मेक द डिफरेंस।

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735 043

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथफील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।
1: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3503।

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दालां गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.

0: करिया कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं।
3: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446। Sunrise and music.

0: Get ready to relive the beats that defined a generation. Daytimers is coming to Sheffield on Saturday, the 8th of August at the Steamworks. Step back into the legendary 1980s Daytimer movement, where Bhangra, electronic beats, and Western pop came together to create a cultural revolution that changed British Asian nightlife forever. Doors open at 2 p.m. with the event from 3 p.m. until 8 p.m. Tickets are just £25. For more information and tickets, visit thesteamworks.co.uk or head to the Sunrise Radio social media pages.
1: गलियां गलियां घूमी ते पैरां नी जुतियां वी कसी गियां पर सस्ता सोना नी मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बारी फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।

0: looking for a quality home to rent.
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
3: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया आबाद लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।